0: मेलाडु मायुका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्त जरुरी सूचना जो बेला खेमरिदे गरम ओबोतरी जेऊ बेला सुनो फुरी कटास ओचुदुरी जेऊ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज संभावना ताए आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप ज सक्षम नारी वातावरण मिलेने लख्यता असर केने री उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिनी गिनी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिनके कोठरे लेला कि नाते जन धनी में खेता छेती ताऊ हो खोकाई
1: वन
0: जंगल सज मेरा आदिवरी बानी एमएल एमए छानेला लिउसोतर पोतरालय पार जगेर हते
1: सलाई लाइटर स्याउला मे सचाउने चिजरालय पूजा बाङजा र यामाडेले पोल गेले या इतो चिजर रहिदे वन जंगल याल के भबाय
0: पिकनिक वन भोज बाको मे सचाउसु छिन्नी मेले चाउसु सैदे कि खनाले वन जंगल ओसो छामनी दैके बारीको चुरो विधि ओरे बनै कोबा
1: नान्थर नाम लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हो नि ढाल्ने छ अनुगमन दिने व्यवस्था चौसर गिरिए
0: गेछो छामेला खोरे ल चाउसी पोलिए होइदे तरिम गाई गेज नेके लाइजु अब नजिरे बने गेम ये ल गेज नेके नलाये औले नयो के नाइजे
1: वन जंगल छ जुलिसी हो गेम बारी ल बाली नाली कुचिला चुली यात्रा र सताउसु छिनी ने चौसो सैले के खेले या
0: वन जंगल मेला के गेमाइए ने
1: कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: सूचना जुओ पेला खेमरीदे गरम ओबोदरी जेउ पेला सोनो फुरी कतास ओचुदरी जेउ आउ पेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज संभावना ताई आउ ये जिमे प्राकृतिक संपदा र तक्षेप्त जस खेमनादे वातावरण मिले ने लखेप्ता असर किएने रि उमूल र थाउने भुछे तामे वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानादे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिएने सोनो नाखार नामे ल मे लागिने सज जिमी जिमी लापरवाही सोनो चाउस खेलगेमा दुख जिंदगी को ठेल मेला की नाते जन धनी में खेपा छिपी ताऊ जुबो होकाई
1: ये छोटा नया बोलना मेला की ने पूरा रंगे नौ पूरा ले चौसो खेल गिरी
0: बन जंगल सरो मेरा आज निभाने एमएलओ एमएओ छोटा मेला ली उसको तो पत्र राले पार जगे रहते ही
1: सलाई लाइटर सियाला में सचाने चीज राले जबांगजारो यामा देने पोलो किने या इतने चीज रह रही थी बन जंगल याद क्यों आ गया
0: पिकनिक बन भोज बाको में सचान सो छिन्नी मेले चौसो सही देखे खिलाए बन जंगल उसको छामने तैगे बारी को चुरो विधि ओरे को नहीं कुबा
1: नान्थार नाम्लो लिजाउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने ढालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चाउस गिरिए
0: गेसो छामेला खोरेल चाउसी पोरिए हरिदे तरिन गाई गेजो मेके लाइजु अब नजिरे बनाए गेम येल गेजो मेके नालाए औलेम लायो के नाइए
1: वन जंगल स जुडिसियो घेन बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा र सताउसु छिनि ने चाउसो सहिदे के खेले या
0: वन जंगल मेला दिगे माइए
1: बतास उचलिजु बेलाको हिजिनके कोटल नेके सताङ्गिने हेनोखेम छिन्ने ने चासके सया
0: ने लागिने निताई गे मने गे बचिए सोनो अरुले मने गे बचया
1: के छ थामला पोयाल ने लागियो कि सन्तिने गे छटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाए उनी कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सभा विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।